में किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं,